शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें।